0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

की फतेह परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शत्र तख्त दे मालिक गुरता गद्दी ते सुभायमान समुची मानुखता नु सांझा ते सुखैन उपदेश बख्शिश करन वाले दीन दयाल भगत वशल करुणा में सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खजूरी विच महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा दीवान खाल मंजी साहिब विखे बड़े अदब सहित पातशाह जी दी खजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों आप जी समूह संगतां वड भागे हो जिन्हां नूं महान पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे सतगुरु पातशाह जी दे चरणां अंदर जुड़ के पावन अमृत सरोवर च इशनान करन दा ते धन गुरु रामदास साहिब पातशाह सोढ़ी सुल्तान पातशाह जी दे चरणां विच नतमस्तक होने का सुभाग प्राप्त होया है। आओ सत संगत जी अमृत वेले जो पावन श्री मुखवाक सचखंड हरिमंदर साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने समुची मानुखता दे लई उपदेश ते असीस रूप बख्शिश किते हन उन्हां पावन श्री मुखवाक दी विचार लई आप जी नेता प्रति इस पावन स्थान ते एकत्र होके गुर शब्द विचार सरवण कर देओ अज दे ना पावन पवित्र बचना नू समझन अते विचारण दा जतन करिए ते बेनती करा गुरबाणी बेअंत है करते परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु दा रूप है। सतगुरु पातशाह जी आखदे ने हो आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो रब दा हुक्म कै विचार जदो चलदी है असी संसारिक तल ते अर्थ जरूर करदे आ अर्थ ते गुरबाणी नू कमाउणा बड़ा वड्डा फर्क है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी बड़ा सोहना बचन क्या करते सी गहरा समुंदर भी है गहरी गुरबाणी भी है गुहज है समुंदर विच जान लग्या बंदा डुबदा है समुंदर की गहराई मनुख की मौत का कारण बनती है जिहड़ा गुरबाणी की गहराई विच जांदा डुबदा भी तर जांदा है गुरबाणी तारदी है। जतन करिए अजोका समा जो कुछ चल रहा है बचन दा इको एक ढंग है मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहा अपने जीवन नू गुर आसे मुताबक ढाल लईए सतगुरु कृपा करन आओ अज दे ना पावन पवित्र बचना नू समझन अते विचारन दा जतन करिए। आरंभता तो पहला आप जी जिन्हें भी शरीर सतगुरु पातशाह जी दे हजूर जुड़े हो घरां विच विदेशां विच बैठ के सरवण कर रहे हो सतगुरु पातशाह जी नू नतमस्तक होके हाजरी लवाओ सारे जपना करो जी।

0: नाम ओ दिन रात एक परमात्मा दा नाम जपदा है गुरमुख, ओ दिन रात एक दी टेक रखदा है जी।
1: इस जोग मह वड्याई पाई,
0: ओ इस संसार दे विच फिर वड्याई प्राप्त करदा है। केड़ी जी? दुनिया वाली। मैं आरंभ विच बेनती कीती सी दुनिया वाली वड्याई ते साध संगत कोई 5 साल बैजूगा, कोई 6 साल बैजूगा, किसी भी थां ते जी, किसी भी थां ते हमेशा लई नहीं बैठ सकता। पर दाता जी कहंदे ने जिन्हां नूं गुरु वड्याई दिंदा है उन्हां दी वड्याई रहिंदी दुनिया तक रहिंदी है। अरदास विच रोज उन्हां गुरु के लालां दी, उन्हां कमाई वालियां दी वड्याई हुंदी है। जतन करिए जी, मैं बेनती करां गुरु दी वड्याई लै लईए। गुरु दी वड्याई मिलेगी किवें? दाता जी कहंदे सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। गुरु दी मत जिसनों आई पातशाह कहंदे ने फिर उन्हां नूं इह वड्याई मिलदी है। किन्हां नूं जी? वाह वाह करें सही जन सोहणे तिन को परजा पूजण आई। उन्हां दे सामने फिर दुनिया झुकदी है जी।
1: पूरे गुर ते नाम ते आई,
0: पूरे गुरु दे कोलों नाम दी दात मिलदी है। फिर जदो कोई पूरे गुरु दे नाल जुड़दा है ओ नाम जपदा है जी।
1: जह देखा तह रहया समाई,
0: नाम जपण वाले दी झोली इक बरकत पैंदी है। जह देखा तह रहया समाई, ओ जिधर नूं भी तकदा है उनुस परमात्मा अकाल पुरख दे दर्शन हुंदे हन जी।
1: सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई,
0: परमात्मा हमेशा सुख देण वाला है। इत्थे तुसी पढ़िया ही नहीं होना कि दुख देंदा है। सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई, ओ हमेशा सुख देण वाला है। दाता जी कहंदे उहदी कीमत नहीं, पैसे दे के नहीं मिल सकदा। ओ किवें मिलदा है जी? मन विच है सतगुर के पास। कंचन स्यों पाई है नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सतगुरु आखदे ने ओ सदा सुख देण वाला है, ओदी कीमत नहीं पै सकदी।
1: पूरे भाग गुर पूरा पाया,
0: बड़े वड्डे भाग होण तां पूरा गुरु मिलदा है। मैं तुहानू कहना सब तू वड्डे भाग गुरसिखा, सानू ते पूरे गुरु मिले ने। दुनिया विच बहुत अधूरे बैठे ने, कोई 60 साल कढूगा, कोई 70 कढूगा, 80 कढूगा, एदे तो बाद ते की कह रहे ने बाबा फरीद साहब जी, जे 100 वरिया जीवना भी तन होसी खे। इत्थे रोज पढ़दे हो जुग हो जुग अटल, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। बस आह जुगत समझ लईए। दाता जी कहंदे सिखां दे भाग सब तो वड्डे ने, उन्हां नूं पूरा गुरु मिले।

0: मिल रहे जिन्हें आप पछाणा, जिन्होंने अपने आप नूं पछाण लिया। आपां पिछे विस्तार कर आए हां, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, पछाणी अपने आप नूं। असी साध संगत थां थां थां थां जाके रुलन वाले नहीं हैगे। दाता जी ने ते सानू खालसा अकाल पुरख की फौज क्या है, असी उस मालक दी आंसा। जिस दिन अपना आप पछाण आजूगा ना, फिर समझ आवेगा, नहीं भाई तू ते कलगियां वाले बापू दा पुत्र है, तैनू ते कलगियां वाले बापू ने कहा सी तू एक अगे झुकना है। जिस दिन एक अगे झुकोगे, दाता जी कहंदे फिर ए मन भटकेगा नहीं। हर सेती सतगुरु आखदे ने सदा मिल रहे जिन आप पछाणा, जिन्होंने अपने आप नूं पछाण लिया, वो हमेशा परमात्मा नाल जुड़दे हन जी।
1: ज्ञानिया का एहो महत है, मान माहे समाना।
0: ज्ञानी जेड़ा है ना, दाता जी कहंदे ए उदा महत पाओ, उदा ए टारगेट हुंदा है मन माहे समाना। वो दूजियां वल नूं नहीं, वो अपने आप नूं पड़चोलदा है। ज्ञानी यही समझाउंदा है, ज्ञानी दा काम डराना नहीं जी, अज तुसी ऐं करता जी, अज ऐं कोया जी, नहीं। दाता जी कहंदे ने पै काहू को देत नह, नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जेड़ा अपने आप नूं पड़चोलदा, सतगुरु कहंदे ओ असल विच ज्ञानी है जी।
1: हर जीओ का महल पाया, सच लाए ध्याना।
0: उन्हें सच विच अपना ध्यान जोड़िया, तेनू परमात्मा दा घर मिल गया है।
1: जिन गुर प्रसादी मन जीतिया, जग तिन्हे जताना।
0: सब तो वड्डी खेड जी सतगुरु समझाउंदे ने, जिन गुर प्रसादी मन जीतिया, जग तिन्हे जताना। अज जोर लगी हुई है किसे नू खुश किवें करिए, किसे नू खुश किवें करिए, यही हालात ने जी। बाहरों ओहदे लई कई वारी असीं भेख भी धारण कर लैने आ। साध संगत कोई बंदा पुलिस विच नहीं ना कहे, जो पुलिस की वर्दी पा लवे ना उन्हू सजा मिलती है, ध्यान देना। कोई आर्मी च नहीं, आर्मी की वर्दी पा लवे उन्हू की मिलती जी, सजा मिलती है। तो मैं तुहानू भी आखांगा, बाहरों धर्म का बाणा पा के जे असी धर्मी ना ना कोई तैयारी आपां भी रखीए, उहदी सजा सानू भी मिलनी है। सतगुरु ने बेनती करिए, पातशाह जे बाहरों बाणा दिता है ना, कृपा करना अंदरों भी साडे कित्थे सच टिक जा, अंदरों भी सच टिक जावे। एक की है जी, ये मन नू जितना है, रोज एदे नाल लड़ना है। खालसा सो जो चढ़े तुरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। किदे नाल? अपने आप नाल रोज जंग करिए, रोज लड़िए अपने आप नाल। जदों असी अपने आप नाल लड़ांगे, दाता जी कहिंदे दुनिया की कोई ताकत तुहानू नहीं करा सकती। तां जी सतगुरु कहिंदे जिन गुर प्रसादी मन जितया, जग तिने जिताना। जिन्हां ने गुरु की कृपा नाल अपने मन नू जित लिया, फिर उन्हां नू दुनिया की कोई ताकत नहीं जे जित सकी। उहदियां उदाहरणां ने, अगे जून दा महीना आ रहा है, गुरु नू समर्पित होए वह गुरु के लाल, सारी हिंदुस्तान की फौज लग गई, उन्हां नू नहीं जे जित सकी, नहीं जित सकी। अज ते साध संगत चार रिश्तेदार सानू जित लैंदे ने, क्यों? असी वह बचन नहीं भुल गए, सवा लाख से एक लड़ाऊ तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। सवा लाख नाल लड़ाया सानू, ते साध संगत अज चार रिश्तेदार ने, क्यों? असी अपने मन नू नहीं जित सके, दूजियां वल चले। दाता जी कहंदे जिस दिन गुरु वल चलेगा, तेरा मन जिहड़ा है वह जितया जाएगा। ते जिहड़ा मन जित गया, मन जीते जगदीत, वह सारी दुनिया ते राज करदा, उहनू कोई नहीं हरा सकता। सतगुरु रहमत करन असी सच वल तुर सकीए। गुरु घर दा पंथ का प्रचारक होने के नाते आप समूह संगतां दे चरणां विच बेनती है, 31 मई नूं महान पवित्र स्थान धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बख्शिश गुरद्वारा बाबा बकाला साहब पातशाही 9वीं विखे महान पंथक इकट्ठ रख्या गया, जिहड़ा सत्कार एक्ट तैयार होया है। उहदे विच खामियां ने जिहड़ियां, क्यों साध संगत दोषी नालों वध जिहड़ा है ना, उह संभाल करन वाले वालों उंगल चुकी है। उहदे विच आपां वी है, तुसीं वी हां। असी यह नहीं कह रहे कि जी तुसी कानून ही रद्द कर दो, सोधा ने मैं थोड़ी देर पहला भी की सी बेनती, भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। मनुख दे कोलो भुल होनी सुभाविक है, ते जिहड़ा अकाल तख्त साहब दे सन्मुख झुकेगा, गुरु रामदास साहब जी दे सन्मुख झुकेगा ना, उन्हूं इत्थों बख्शिश ही मिलनी है, वडियाई मिलनी है। जतन करिए फिर, सारे ने उत्थे कुम पा के पहुंचना, भावें साध संगत कोई आम सिख है, खास सिख, सिख जंदे जथेबंदियां, सुखमनी सोसाइटियां, सिख विद्वान चिंतक सारे नूं पहुंचण लई बेनती है। 10 बजे दा 11 बजे दा समा उत्थे दा रख्या गया, सारे ने पहुंचण दी कृपालता करनी। आओ शब्द दा अखीरला बंद पढ़ के फिर संपूर्णता कह जी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो Bobby Dodd @403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवे नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्ना लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: संबंधी कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 ट्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 4 0 0 3 6 7 5 7।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी अकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 start या विजिट करो www.

कह ना सकत के। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान सहे सहान गन जय। रे भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंत्रण कहत तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत।

सतगुरु प्रसाद असा महला चौथा संत घर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास।

0: जाको आप करे पर दास थोड़ी नानक जीव पाई कै लिखना वे धर्म बहाल्या ते सचे सच निबड़े चुन वख कड़े जज माल्या थावन पाण कूड़े यार मुंह काले दो जित चल तेरे नर किसे जिन गए हार गए से ठकन वाले लिखना वे धर्म बहाले धर्म बहाले लिखना वे धर्म बहाले
1: ਚਾਲਿਆ।

जो सीखे अखाए गुरु सतगुर का जो सीखे अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवे हर नाम ते आवे।

महला चौथा गुरमुख टूंड टूडेंदिया हर सज्जन लगा राम राजे कंचन काया कूट गड़ विच हर हर सदा।

चरखा चक्की चक थलवार वाले बहुत आनंद लटू मदानी आयन गाहा पंखी पहुंदिया लै नसा सुए चाड़ पाइए जंतनान पौंदिया गंतनांत बंदर बंद पाए सोए पया किरत नचाए सब कोए नत नत हसे चले सिरोए उड़ना जाई सदना होए नचना कुदन मन का चाओ नचना कुदन मन का चाओ नानक जी।

0: नानक हुक्म लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा।
1: हमें एहा जात है हमें कर्म कमाहे हमें यही बंदना फिर जो नी पाहे हमें कितों उपजे कित संजमे हजाए हमें एहो हुक्म

0: ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संध्या में दुख जाए पौड़ी से कि संतोख
1: जिन संतो सच त्याय उन्नी बंदे पैन रखे

लख सुरतन लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, लख सुरती लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना क्या लिखा या मन जान, नानक मती मिथ्या नानक मती मिथ्या, कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच बरताया जिस दिन मिले सच तां दिनी सच तुम्हें सतगुरु मिले सच पाया।

भगत पंडार है गुरु सतगुर पासे राम राजे गुरु सतगुर सच्चा साहब है सिख दे हर रसे

सत्सा हो हमारा तू तनी सब जगत बन जाना राम राजे सब पांडे तुझे सजा बिच वस्त्र।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार, कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार।

होसी सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखा कूड़ डोबे कूड़, नानक विखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।

0: भाई है, सेवक भाई है, सेवक भाई।
1: हम क्या गुण तेरे
0: तेरे स्वामी तू अपने अपारो राम राजे।
1: हर नाम सला है दिन रात,
0: ए हया सदारो हम मूरख के चून दाना।
1: किव पावे पारो जनानक हर दास है,
0: हर दास पनिहारो पनिहारो।
2: मल्ला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल कल बेताल, बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवेदाल। जे कहोए ता गवे रुति हुरत होए, नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए। पै विच खुंभ चढ़ाइए सनम पाहो तन होए, नानक भगती जे रपे गुड़े सोए। ना कोई महला पहला
0: लब पाप दुए राजा मेहता, कूड हुआ सिकदार काम। नेब सत पुछिए बै बै करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दा। गानी नचे बाजे वावे रूप करे सिगार, उचे कुके वादा गावे जोदा का विचार। मूरख पंडित हिकमत जुत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोख द्वार। जति सदा वै जुक्त ना जाने छड़ बहे करबा, सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे। पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तो लिया जापे महला पहला।
2: वदी सवज गनान का सच्चा वेखे सो, सब निछा करता करे सो होए।
1: अगे जात न जोर है अगे जियोन वे, तिनकी लेख है पत पवे।
0: चंगे से ही के पौड़ी तोर कनु जिनक तुद।

0: सुख दारू सुख रोग प्याजा सुख तामना होई तू करता करना मैं नहीं जाहो करीना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला पर पूर रहया तू सच्चा साहेब सुरत वालो जिनकी दिसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किसे करना सो कर रहया महला दूजा
1: योग शब्दों ज्ञान शब्दों वेद शब्दों ब्राह्मण खतिरी शब्दों सूर शब्दों सूद्र शब्दों प्राकृत सर्व शब्द में एक शब्द देखो जाने पहो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: बे बदा जल रह जल बिन कुंभ ना होए
0: बदा मन रह
1: भोर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़िया हुए गुणगा तायों नी साध न मारिए जिया तल तल ना तेवे हो ना पचारिए ऐसी कला न खेडिए जित दर गए गया हारिए पड़िया ते उमिया विचारे अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे

हर दर्शन की प्यास है। दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, हर दर्शन की प्यास है। दर्शन तृप्ताए।

दर्शन तृप्ताए हर दर्शन के प्यास है। दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए।

सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुरमत मल नासी सतगुर चरण कवल रिद धारण गुर अर्जन।

पागल मनोरथ पूरी आशा, जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजात वखाण्यो, भगत जोग को जैतवार, हर जन को उपाया, शब्द गुरु पर काश्यो, हर

रामदास भगत उत्तर आया बड भागी उन मानिया रिद शब्द बसाया मन मानक संतोखिया गुर नाम दे।

खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आज जो नी संभव्यो सुजास काल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस प्रमाण साध जीवन अर्जुन अमोल आजोनी संपो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गैन परम प्रांत दैन शीतल सुख दातो असंभो उद्वयो पुरख पूरण विदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग।

आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भूमंडल छायो पारस परस

0: सकल सृष्ट लग बेतरों ते जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों अपर परम पर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्ब में अर्जन गुर भगत क्या हेत पाए रहो मिल राम स्यों।
1: अंत न पावत देव सभै मन इंद्र महाशिव जोग करे हुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जनको प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जन माहे तरी जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताक्षर दै गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
2: जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कप हो मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार जहे मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ आयो कल समुंदर पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार पास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो भयो ते समसर सोई धरन गगन नव खंड मै जोत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर।
3: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो।
4: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै असुर गेते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दा जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो काटे सो पाप तिन नरों के ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਾ ਦੇ ਆਇਓ।
5: ਸਤਿਗੁਰ ਖਿਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ, ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ, ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੁਮ ਹੋ ਰਸ ਜਾਣੇ, ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ, ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ

येन त्वमपेज्ये तिनः बुलाये सुख सहज सेति कार्याओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तोला निह चल राज कमाओ जेन तुम भेजे तिन है बुला।

हाओ प्रगट किन्ने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कर मंगल वाजह नित वाजे अपने खसम ने वाजे अस्थिर रहो डोलहु मत कबहु गोर का

किन पारस परस मिलायो, किन पारस परस मिलायो, तन तन गुरु रामदास वर, तन तन।

असा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया मिलिया राम अज्ञान तेरा कटिया गुरु ज्ञान कट भलिया।

कर्मं कर्मं सब भोग ने छो कर्मं तो नानक ने तो ध्यावे बिन सतगुरु वाड न पावे पड़ कपड़ू भावना छट दुनिया अंदर जमना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना तुमके बड़ पावरे राहे पीड़े अगे जमना नगा दूज चले कांदिसे खड़ा रामना पर अगन पचुतावना पचुतावना रे

0: स्नान का जो घन चले पाए चौकड़ मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण किया ओह मुआ ओह कर पया वेत गा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लग ठगियां पैना मियां रा दिन जिना तक पाओ कतिया बमन वटे आए को बकरार खाया सबको आखे पाए कोई पुराना सुटिया पी फिर पाए हो नानक तक न टुटई जे तक हुए चोर महल्ला।

0: सर पाई तगना टूट सपूत महला पहला
1: तगना इंद्री तगना नारी भलके थुक पवैन तुदारी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना खीवे तगा आपे वत्ते वड़ता गै वरा कथे ले पहाड़ करे बिया हो कड़का गल दसेरा सुन वेखो लोकां एहो वेडा मन अंधा नौ सुजान पौड़ी साहिब हो गया कृपा करे साई कर त्राईसी सो सेवक सेवा करे जिसनो त्राईसी मन हो वे प्रवान ता खसमे कामल पाईसी खसमे पावे सो करे मनु जने आ सो फल पाईसी तादर गे तादर जैसी पेंदर जैसी तादर गे पेंदर जैसी
2: पावे
1: कहो पंडित

राजे जिन्हें अंतर कपट विकार है तिनर क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हर दीजे जिन नानक गुरु दस है हर भगत हर

0: जे मुहाका कर्म है पितरी दे अगे बस समझाणगे पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्पिए करे नान के अगे सो मिले जे कटे कल दे महला पहला
1: जो जोर सिरनाम नी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित तो सुचे नाथिये वैंज पिंडा धोए सुचे सही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने।

नाही हार्या कर्मेशकाया विंग महलत मर्न मिसार्या जर आई जोबन हार्या जोबन हार्या जर आई जोबन हार्या।

0: जेकर सुतक मने है सब ते सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाजन कोए पहला पानी जो है जितारिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक परे रसोई नानक सूत के मन तेरे ज्ञान उतारे तो ही महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़की सूतक वेखना परत्रे परत रूप कने सूतकन पहला तो बारी खाए नानक सा आदमी बदे जमपुर जाए
0: महला पहला सब सूतक परम है दूजे लगे जाए

0: हरे फूल बीज फिर तो ढूंढ आवे हर फूल केरी फिर तो न आवे हर फूल केरी हर फूल के
1: पहला सुचा पे सुचे बैठा है सुचे अगे रखे नो कोई ना पिटियो जाए सुचा हो के जेवे लगा पंडित लोग को हती जाए सके के सेव लगा दो अन्न देवता पानी देवता बेसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत कहो आपा कृत पापी सो तन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उतरे बिन नाम रस खाए नानक वे जानिए जित मुख तुका पाहे महला पहला
2: पंड जमिए पंड

मस्तिष्क जोत है न काट है न बाड है न काट बाड होत है बिन करतार न कीर्तन

कृपा तुम्हारी कर, मैं न गयो सब तो ही बखान, बिन करतार न किरतम मानो, काहू ले पाहन पूज

कह काल के बनाए सब काल ही चबाए गए तेज जो तेज मैं तेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाए सब ताहि में समाए सब ताहि में समाएंगे बिन करतार न किरता मानो बिन करतार न किरता मानो।

0: कोई करगल सुनावे हर नाम सो लगे गुर सिख मन मिठा हर दर गए गुर सिख पहनाइए जिन मेरा सतगुर कुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा मन बुठा मन बुठा
1: जिन पटंदर बाहर गुदरते भले संसार तिने हो लगा रब सेती देखने बिचार रंग हसे रंग रोवे चुपती कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बा सचना दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाई दे बाने को कल में का हमा तुम में डर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पड़िया पे ही करना की हो कल आते पीते तारिये देखे की पर अपना पर कच्ची पक्की सारी है जो आया सुदल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी

0: करे ताकि नानक जी सुनो लगा दिस मिले लगा सो प्रमाण भला दूजा
1: जो जी हो सो गए मुह का कया वाओ बीजे बेख मंगे अमृत वेखो ए न्याओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास साहिब से तीयू तुम ना चले कहीं बने अरदा कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विकास महला दूजा।

0: साहेब तुटे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए, नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक जापनी।

सेव के अधीन कटैया जमदार के देवन के देव देवनाथ घूम के पूजैया है मोहैया महाकाल के कामना के कर है के बुद्ध ताकू के काल है तू काल के काल है तू चाल के काल है तू चाल के राजन के राजा महाराज हूँ के साजा राजन के राजा गोविंदे मुकंदे उदारे।

अतरक चलिए शत शतरक तलिए शत तारक चलिए महासतरंग के सारे दान के दवैया महामान के बढ़िया वसान के दवैया है कटे जा बुझा विरोध के मिटैया महाबुद्ध के दवैया महामान हु के मान है ज्ञान की जात महाबुद्ध तक तत देवताल कुताल महाकाल कुताल देवताल कुताल महाकाल कुताल देवताल कुताल महाकाल कुताल राशि को सर है कि सुध तक परे है कि सिद्ध तक सारे है कामना दिखान है कि साधना किसान है बिकता के बाण है कि बुद्ध को उदार है सुंदर से रूप है कि भूपन को भूप है कि रूप हूँ को रूप है को मत को बरार है दिन न को बता है गरी मन को गार के साथ इनको रस है तुरन को पहाड़ है तुरन को पहाड़ है तुरन को पहाड़ है राजन के राजा महाजा जो के साजा।

प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई ते आए, फेर अंगद गोर ते अमरदास रामदासै होई सहाए। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए, सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादियां, चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े, आरिया नाल चराए गए, गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे, तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत

सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पाते सा हु सिर साहां जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहां दा साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सत नाम

नेह चल राज कमा जिन तुम भेजे तिन है बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तोना नेह चल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा भई बतीत रहा प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कर मंगल वाज नित वाजे अपना खसम निवाजे अस्थिर रहो डोलहु मत कबहु गुर का बचन आधार जय जयकार सगल भूमंडल मुख उज्जल दरबार जिनके जीवन

0: अचरज किया करनहार, नानक सच वडिआए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह। तनासरी महला पंजवा, जिन तुम भेजे तिन है बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज धुन निःचल राज कमाओ।
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू समझा रहे ने, तैनू सारियां गल्लां भुल जान विसर जान, पर ए गुरसिख ख्याल रखी एक रब दा नाम ना भुलाई। दादा जी सोझी दे रहे, सारा कुछ तेनू भुल जाए विसर जाए, रब दा नाम ना तेनू विसरे। बस जदों तू रब नू भुला देंदा ऐ ना, ते तेरे ते दुखां दे पहाड़ टुट पैंदे ने। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, धन गुरु अर्जन दे महाराज सतगुरां दे चरणा विच दो भरा बैठे जोदड़ी पै करते ने। सूरज प्रकाश दे बोल, एक पैड़ा फुल दुर्गा आयो, श्री अर्जन को सीस नवायो। पैड़ा ते दुर्गा दो भरा गुरु अर्जन दे महाराज जी नू बिने करदे ने, महाराज साढ़े घर विच हर वेले कलेश। बच्चे बोल कुबोल बोल दे, सारा दिन असी मेहनत मजदूरी करते हाँ ता भी पूरी नहीं पैंदी। सुनिया है जेड़ा तुहाडे घर आंदा है सुखां नाल झोली भर जांदी।

उस रब नू याद करदे हुंदे दसां नौहां दी नेक कमाई करके दसवंद कट दे कहण लगे महाराज संगत विच असों

ते दसवंद कित्थों कढ़ना है। महाराज कहण लगे ताइयों फिर गुजारा नहीं चलता। हां भाई

महाराज सोजी दे रहे। हर वेले उस रब नू याद रखिए, नेक कमाई करके जिथे अपने बच्चियां दे मुख पाइए, गरीब गुरबे दे मुंह विच भी पाइए। रब याद रहे ते सुख बने रहते। पैड़े ते दुर्गे ने सतगुरां दे बचन पल्ले नाल बनने। अपने घर आए, घरवाली नू बच्चियां नू बठा ले, सारी गल सुनाई। इंज महाराज जी ने सुखां दा राह दस्या है। प्यारियो, ये सतगुरां दे बचनां ते चलण लग पए ने। जिथे भी संगत हुंदी सारा परिवार जांदा है, हत्थी भी सेवा करदे ने। थोड़ी कणी जिहड़ी कमाई करदे ने ना, दसवंध भी कढ लैंदे। गुरु इन्हां दे चित वस गया, अज होर कल होर, सुख वधणे शुरू हो गए। बाबा नंद सिंह जी सोझी देंदे सन कई बार ना, ओ निरंकार झोलियां भरन तो पहला भांडिया नू टणका के भी देख लैंदा है। ये भांडा पक्का है कि एवें दातां दा ही भुखा गुरुद्वारे गेड़े मारदा है। गुरु टणका भी लैंदा है। आ एक दिन पिंड दे विच बहुत सारी संगत आ गई। ये संगत अमृतसर चली है गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते। ते पिंड वालियां नू पता ही हुंदा है ज्यादी सेवा कौन करदा है। पिंड वाले कट्ठे होए ते पैड़े ते दुर्गे दा जा दरवाजा खड़काया, भी संगत आई है। असां सोचिया तुहानू बहुत चा रहिंदा है सेवा दा, अज शाम दा लंगर तुहाडे वल्लों ही रख दिता है। सत वचन कह के सेवा झोली विच पवा ली। हुण दोनों भरा बेड़े दे विच बैठे सोचदे ने, असां ते कदे आप ना रज के खाधा, एनी संगत नू शाम तक कित्थों लंगर।

गरीबी आ जाए ते कोई उधार भी देण वास्ते तैयार नहीं। दोनों भरा पैड़ा ते दुर्गा डूंगियां सोचां विच डुबे बैठे ने। दुर्गे दी घरवाली बड़ी सुगड़ सियाणी अंदर जांदी सोने दे कीमती कीमती

ते प्यारियो इनानु इंज प्रतीत होंदा ए जिमे हरेक पंगत दे विच तानु गुरु अर्जन देव महाराज आप बैठे इंज प्रतीत होंदा विच संगत हर प्रभु वसे थी। संगत ने लंगर छकिया असीसा दे के संगत उठी संगत ते चली गई। हुण सारा परिवार बेड़े विच बैठा सोचदा है महाराज अज ते असी गहने वेच दिते घर गिरवी रख दिता जे फिर तू इम्तिहान दा परचा पा दिता ते फिर असी की करांगे फिर असी फेल हो जाऊंगे। पैड़े दे हाथ विच लकड़ी दा टुकड़ा है लकड़ी दे टुकड़े नाल मिट्टी जमीन दी पुटदा है नाले सोचा विच डुबिया वे की तकदा है थले कुछ दबिया होया है। मिट्टी परे हटाई एक गागर निकली ए सोने दिया मोरा नाल भरी पई है गुरु बहाने नाल दिंदा है। असी कल जुगी जीव सोच लैंदे हां वे खबरे झूठियां ही गल्लां ने ये सूरज प्रकाश का इतिहास है। भाई गुरदास जी ने भी पैड़े ते दुर्गे का जिक्र किया है मोहरां चुकियां घर भी गिरवी छड़ाया गहने भी वापस ले आंदे बचियां मोहरां सिर ते गागर चुकी ते पहुंच गए अमृतसर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे चरणों दे विच। सोने दी मोहरां दी गागर रख के सारा परिवार दोनों भरा अगे हो के सारी गल सुना रहे ने महाराज आ कुछ होया है।

ते मैनू तुहाडा कोई फिक्र नहीं। ओए दुर्गिया, जदों तैनू संगत दी सेवा दा फिक्र हो गया सी भी मैं किवें सेवा नवावांगा, ते मैनू तेरा फिक्र हो गया सी ए गरीब एनी सेवा किवें करेगा, मैनू तेरा फिक्र हो गया सी। मेरे महाराज कदी नहीं सहार सकते मेरे सिख दे बच्चे घरों बेकार बैठे हो, मेरे दाता जी एक कदी नहीं सहार सकते मेरा सिख किसे दा करदाई होवे, मेरा सिख किसे दा देनदार होवे। हां बई तुहाडे सुखां दी जिम्मेवारी हुण मेरी हो गई, तुसां जीवन बना लिया है। प्यारिओ इतिहास विच्चों सतगुरां दे पावन उपदेश दे विच्चों

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, साउथ ईस्ट कैलगरी, नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

हौ मैं कर्म कमाहि, हौ मैं एई बंदना, फिर जोनी पाहि, हौ मैं एहा जात है, हौ मैं कर्म कमाहि, हौ मैं एई बंधना, फिर जोनी पाहि, हौ मैं किथों उपजै, कित संजम एह जाय, हौ मैं एहो हुकम है, पैं किरत फेरा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जा होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैन लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue North East Calgary

सिमर सिमर सुख सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। मध्य विच गुरसिख प्यारे हुए श्री गुरु अर्जन दे महाराज दे सिख भाई अकल जी, उन्होंने मालवे विच किसी जान पछाण ते अपनी धी लड़की का रिश्ता कर दिता। पहले जमान्यां विच लोग छोटी उम्र बच्चियां नूं मंग दिंदे सी, 15-15 साल रिश्ते होए रहिंदे सन, क्योंकि लोगों नूं एक दूजे उत्ते विश्वास हुंदा सी। सासन हुण लोगों के अंदर विश्वास घट गए। रब की गल छड्डो, वे रब ते विश्वास रखना तो बहुत दूर की गल है। हुण तां लोगों नूं अपने आप ते एक दूजे रिश्तेदार भैण भाई उत्ते विश्वास नहीं रहा। लोग एक पल विच बिगड़ जांदे ने, क्योंकि जदों रब ते विश्वास ना दवे फिर सत्संग रब की बनाई कायनात उत्ते भी विश्वास घटन लग पैंदा, लोगों उत्ते भी विश्वास घट जाता। वो भाई अकल ने 10-15 साल पहला रिश्ता कर दिता। तो सत्संग जदों बच्ची जवान हुई, भाई अकल ने अपनी धी का विआह मालवे विचों बरात आई। बरात आने तो 2 दिन पहला भाई अकल नूं पता लगा वी जिथे मेरी लड़की विआही जानी है वह बंदे तो सखी सरवर दे पुजारी आ, उन्हीं का घर में नगजे की कवर बनाई है, वह तो गुरसिख है ही नहीं। उस घर में तो मेरी बच्ची बाणी नहीं पढ़न देनी, वाहिगुरु नहीं कहन देना। तो बहुत उदास हो गए, पर हुण रिश्ता किवें तोड़े। 2-4 दिन बरात विच रहिंदे सन, कहिंदे ने फिर उन्हें अपनी लड़की नूं कहा, बेटा मैं तेरा गुनाहगार हाँ, जिथे तेरा मैं रिश्ता किया सी, हुण विआह शादी के दिन नेड़े आ गए ने, वह बंदे सखी सरवर दे पुजारी है, उन्हीं घर में तेनों गुरु नानक की बाणी नहीं पढ़न दे। पुत्र जे अज रिश्ता तोड़ दे तो समाज में बहुत अपनी नरादरी होएगी। तो बच्ची ने कहा, पिता जी जो मेरे भागा का अकाल पुरख वाहेगुरु ने लिखे है, जे लेख इदा ही लिखे तो इसे तरह सही। ये तो अकाल पुरख वाहेगुरु ने संजोग लिखे ने, संजोग वियोग धुरों ही हुआ। पिता जी थोड़े तो वस की गल ही नहीं है, ये तो धुरों संजोग लिखे ने। हर नमो मंत्र दृढ़ाए दा कट्टे हो मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया, जिन्हां तुरे पया संजोग। जे संजोग ही तुरों लिखे ने फिर पिता जी तुहाडा कोई दोष नहीं, तुसी उदास ना होवो निराश ना होवो। तां सत्संग तो विआह शादी कर दित्ती, बच्ची ना डोला तोर दिता। इतिहास कहिंदा जिदों बच्ची नूं डोली च बिठा के तोरिया उदों रातां नूं बरातां आउंदियां सन, दिने रहिंदियां, रात नूं बरात जांदी सी वापस। तो डोली चक के तुर पे, चलद्या चलद्या रात सारी बरात चलती रही। अमृत वेला होया तो मालवे विच एक पिंड है डरोली पाई, उत्थों जदों बरात लंघन लगी अमृत वेले उत्थे कीर्तन की आवाज आ रही सी। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज डरोली पाई रुके हुए सन, गुरु के कीर्तनी आसा की वार कर रहे सन, आवाज आ रही सी। वह बच्ची के कन्ना विच अमृत वेला टिकया होया, उदों साध संगत वेखो अमृत वेले 3-4 बजे तां तुहानूं एक पिंड की आवाज दूजे पिंड तक कीर्तन हुंदा सुणो। तां जदों कन्नां विच आवाज पई डोली विच बैठिया, उन्हें डोली रोकण वास्ते कहा, कुहारा ने रोक दित्ती। उन्हें अपने घर वाले भाई साधु नूं कहा, जी सारी उम्र मैं तुहाडा हुक्म मनना, क्योंकि तुहाडे नाल मेरी विआह शादी हुई है, मेरे पिता ने तुहाडे लड़ लाया। एक मेरी बेनती है, आ जिथे कीर्तन हो रहा है थोड़ी देर एक घड़ी मैनू संगत में जाण की आग्या होवे तां नाल चलो, मैं घड़ी संगत में जाना चाहुंदी। तो उहदे घरवाले ने कहा, कोई गल नहीं, नाले बरात थोड़ी देर विश्राम कर लेगी। कुहार तुर तुर के थक गए ने, कुहारा नूं रोक दिता। आप अपने घरवाली नूं लै के भाई साधु ते उहदे घरवाली नवीं विआही जोड़ी जाके 6वें पातशाह दे दरबार जिथे सड़क उत्ते दरियां विछियां कीर्तन हो रहा सी, संगत बैठी है, दोवां जीआं ने जाके मत्था टेक दिता। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कीर्तन सरवण कर रहे थे, पातशाह ने अचानक नेत्र खोले, सामने वेख्या नवा विआह जोड़ा बैठा। तो उन्होंने वस्त्रां तो पता लगता नवी विआही जोड़ी है, भाई साधु ते उहदे घरवाली। 6वें पातशाह ने जदों शब्द समाप्त होया, कीर्तनियां नूं रोक के हजूर ने बड़े प्यार नाल पुछया, बेटा कित्थों आए हो तुसीं? तां उह नवा विआह जोड़ा भाई साधु ते उहदे घरवाली, उन्हें उठ के मत्था टेकिया, महाराज मैं माझे तो हाँ, इधर दो मालवे विच मेरा विआह होया, यह मेरे घर वाला सिरदा साई है। डोली जा रही सी, कीर्तन की आवाज कन्ना विच पई, महाराज संगत विच आ गए। 6वें पातशाह बड़े प्रसन्न होए, सतगुरों बचन कहा, बेटा मंगो की चाहिए।
ਦੋ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਤੀ ਏ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗਹਿਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਹਿਣੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚਮਕੇਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਆਏ ਸੀ ਉਦਣ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਮਕ ਲਿਆਏਗਾ, ਨਾਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਈ ਰੂਪਾ। ਰੂਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਪੜੋਗੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੂਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ

सिमर सिमर सुख सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सिमर सिमर सुख पावो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख पावो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख सिमरो सिमर सिमर सारे जप्यो वाहिगुरु वाहिगुरु वाह।

0: गुरु सिमर सिमर सुख पावो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख पावो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख सिमरो सिमर सिमर सुख पावो।
1: सतगुरु कृपा करन।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एमएंडआर रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। एमएनडीआर रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ग्रोसरी बकेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दी एप ग्रोसरी बकेट्स तों तुसी घर बैठे ग्रोसरी ऑर्डर कर सकदे हो। इना कोल 450 तों वध ग्रोसरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल ने। तुसी ग्रोसरी ऑर्डर करन लई इना नूं कॉल कर सकदे हो अते इना दा ग्रोसरी ट्रक तुहाडे घर दे अग्गे आ जांदा है। स्टूडेंट ग्रोसरी प्लान अते होर जानकारी लई कॉल कर सकते हो 587-333-9091 587-333-9091

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700, 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तनासरी महला पंजवां।

पत्त पावन भगत वत्सल ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान मुक्ति दाते रूहानियत दे मुजस्मे कलयुग दे बोहित जुगो जुगे अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद विच सजी होई वडभागी साध संगत जी वडभागी हो तंता दे योग हो अहो भाग आप जी दे नितनेम प्रेम भावना सहित सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी दर्शन इशनान करके सतगुरां दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दीवान अस्थान मंजी साहिब विखे सज बैठी सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु स्वरूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो संगतां दे गुरु चरणां नाल जोड़न दे वास्ते प्रबंध ने महान उपराले कीते ने जिथे संगतां कलयुग में कीर्तन प्रदाना सरवण कर दिया ने उथे दीवान अस्थान विखे सुनहर कथा उतारी मैल महापुनीत भय सुख सैल सतगुरां दे अमृत बचना दे अनुसार गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा और जो सतगुरु जी अमृत वेले त्रुट के साडे कलयुगी जीवां दे उधार हित जीवन दे असली मकसद नूं समझाउण दे वास्ते जीवन दे हर पहलू नूं गुणवत्त दे अनुसार ढालण दे लई सफल जिंदगी जीउण वास्ते अमृतमई बाणी दे सतगुरु पातशाह जी मुखार बिंद विचों बख्शिश कीते इलाही फुरमान बख्शिश करदे ने जिस दी आप जी रोजाना ही गुरु के प्यारियां दे पासों विद्वाना पासों बड़े प्यार विच अमृतमई बाणी दी कथा सरवण करके अपने स्वासां नूं सफले करदे हो चरण लेखे दे विच लाउंदे हो शरीर दियां इंद्रियां नूं पवित्र करन दे वास्ते साहिबां दी पावन गोद दा निघ माणदे होए हाजरी लवाउंदे हो सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती शहीदां दे सरताज आउण वाले दिनां विच जिन्हां दा महान पावन पवित्र शहीदी दिहाड़ा श्री दरबार साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत वड्डे पद्धर ते मना के संगतां नूं गुरु इतिहास गुरबाणी सरवण करवाउणी है पंचम गुरदेव निरंकारी जोत अपने मुखार बिंद विचों जो अमृत बचन बख्शिश कीते ने ओ सतगुरां ने तनासरी राग दे विच उचारण कीते ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच राग ते रागनियां उचारण कीतियां गईयां ने पर सतगुरां ने राग तनासरी शब्द वरते है इस करके सतगुरु जी तनासरी राग दे विच जो महान बख्शिश कर रहे ने आओ उसकी विचार कहन सुन दे लई सुरतियां बिरतियां एकाग्रता दे विच करके जो असी समा गुरु हजूर विच बतीत करना है
ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਣ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ

ऐ मेरे मन, जिस मालिक ने यह शरीर बख्शिश किया है, ऐ मनुखा जन्म बख्शिश किया है, मनुष्य क्यों कहा जाता है, मनुख क्यों कहा जाता है इसनू, क्योंकि एदे पास मन है। इसे करके साडे देश दे ऋषियां मुनिया ने इसनू मनुष्य कहा, मनुष्य मन रखण वाला। मन दे चार रूप ने, कदे मन बुद्ध बनता है, कदे चित्त बनता है, कदे अहं बनता है। अंतस्करण दे विच मन नू रोक के रखना है, मन नू टिका के रखना है। इस करके अरदास करनी है गुरु दे अगे, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। किसे मड़ी मसाणी ते अरदास ना कर, किसे जंडी पिपल दे अगे अरदास ना कर, गुर पै अरदास कर। इथे रारे दे सहारी लगी होई है कि जदों अरदास करनी है ना, गुरु दे अगे अरदास कर। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करदे ने, हे मेरे मन, अपने सोए स्वरूप रूपी घर विच आउणा कर। मालिक ने यह जीवन बख्शिया, मनुखा जन्म, मन है इस दे पास, ये सोच भी सकदा है, चिंतन भी कर सकदा है, शुद्ध अहंकता दे विच भी हो सकदा है। जे मन तो यह काम ही नहीं लैंदा तो फिर तो पशु है, पशु दे पास मन नहीं है। इसलिए सतगुरु पातशाह कहिंदे ने, ऐ मेरे मित्र मन, भटकणा नूं त्याग दे, चंचलताई नूं त्याग दे, देशां विदेशां विच भटकणा त्याग दे, अपने सोए स्वरूप रूपी घर विच आउणा कर। हुण मन किवें टिकेगा? यह जीवन जिहड़ा बख्शिया ना सतगुरां ने, गुरबाणी विच जितनी भी अमृत वही बाणी है, मनुख नूं समझाउण वास्ते है। किसे पशी पंछी पशु पंछी नूं समझाउण वास्ते नहीं, पर मनुख नूं समझाउण वास्ते पशुआं पंछियां दी तशबीह दित्ती है। मनुख नूं 21 गुण पशुआं पंछियां तो लैने चाहिए, 21 गुण। जे 21 गुण असीं पशुआं पंछियां तो लै लवांगे ना, ते मन टिक जाएगा, मन टिक जाएगा। बड़े प्यारे बचन कहे ने चाणक्य ऋषि ने, वो कहिंदा है, एक गुण केहर ते एक बखते लेवै, चार गुण कुरकट ते तीन गर्दव ते लेवै, पांच बाजते लेवै, खट सुवान के कहे, राजनीत की बात ये चाणक कहे। कहिंदे शेर तो भी एक गुण लेना चाहिए, इत्थे व्याख्या का समा नहीं। कहिंदे एक गुण बक ते लेवा, बक कहिंदे बगले नू। बगला जदों किसे छप्पड़ दे किनारे ते, किसे शंभ दे किनारे, नदी दे किनारे ते बैठदा है ना, खलोंदा है, बिल्कुल अडोल हो जांदा है। कोई ओदी अख नहीं झमकती, कोई खंभ नहीं हिलदा, कोई लत्ता पैर नहीं हिलदे। कहिंदे ऐन अडोल हो जांदा है। ते साहब कहिंदे आ मनुख तू बगले तो ही लै ला गुण एक। जदों बैठदा है ना गुरु की संगत विच, जदों बैठदा है नितनेम करन वास्ते, जदों बैठदा है सिमरन करन वास्ते, ते बिरतियां नूं अपनियां इंद्रियां नूं संकोच लै। बगले वांगू अपनिया बिरतियां नूं इंद्रियां नूं संकोच लै। केवल ते केवल तेरा ध्यान एक निरंकार दे वल्ले होवे। वो एक टक बैठदा है, जदों उहदा शिकार हुंदा चढ़ा उसे वेले उहनू पकड़ लैंदा। इसे तरह मनुख ने बैठना है गुरु दे चरणां विच। यह जरूरी नहीं कि असी काम धंधे छड के बैठना है, जिथे भी बैठना है कागर च धो के बैठना है।
ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੇ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਵਿਖੇ ਅਨਕੋ ਤਾਹੇ, ਕਿਹ ਬੇਦ ਰੋਕੋ ਤਾਹੇ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਣ ਤੇ ਛੁੱਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ

फिर करना की है, क्योंकि जदों बाहर भटकदा है ना मन, विकार नूं भटकता भड़काउंदे ने। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे जदों घर विच आ गया सोए स्वरूप रूपी अंतस्करण रूपी घर विच वस गया, फिर आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुनी विच, आराम दे विच होके, एकाग्रता विच होके, सहज अवस्था दे विच होके, जदों कोई चंचलता ही नहीं, कोई हिलजुल नहीं, उस अवस्था विच होके गुण गाओ। उस मालिक दे गुण गाए ने, प्रभु दे गुण गायन गायन करने ने, उस मालिक परमेश्वर दे गुण गाने ने, किसी व्यक्ति दे गुण नहीं गाने, उस वाहिगुरु दे गुण गाने ने। ते जदों वाहिगुरु दे गुण गावांगे ना, फिर आनंद मंगल खुशियां ही खुशियां, फिर खेड़े ही खेड़े, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ना तसवीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, की है इहां खैर सदा मेरे भाई। फिर आनंद मंगल बन जाता है, आत्मक आनंद हो जाता है।

आधार आसरा लैके गुरु दे शब्द दी टेक लैके जदों मन चार च फिरे दौड़दा है ना ते मन दे विच सिमरन शुरू कर दिया कर। डॉक्टर वीर सिंह जी भी यही बचन कहिंदे ने ना, मन दौड़दा है ते इस नूं रोकण वास्ते गुरु दे शब्द दा होड़ा लै। मन लोचा बुरियाइयां गुर शब्दी ए मन होड़ी है। मन नूं गुरु दे शब्द दा होड़ा लाउणा है, रोकणा है, दे मन विच दया पा देना है। इसलिए सतगुरु जी कहिंदे ने गुरु दे बचना दे आधार आसरे दे नाल ए तेरा मन जिहड़ा अस्त्र रहेगा, कदे डोलना मत, कदे मन नूं डोला।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th Street, Northeast, Calgary।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस

0: फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63rd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू, साउथ वेस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670, 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याइया, जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निद आवै ताई सब थाई।

गुरु बोलाओ जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसां सवासां नाल निभाही।

गुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

0: सोदार रहरास साहेब जी दे पाठ जी की अरदास कुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह
1: जय सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटह खेन जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन जय सतगुर सिमरंत जी की तबत मिटावै जे सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नवनिद पावै सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करहो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरहो रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रत्न अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे भंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामदी नूर अरसोहो कुरसोहो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दा विसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशांदशाहो। जिस पास बैठिया सो ही है, सबना

सोरठ महला पंजवा सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकी शरणी पाइए दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाइए सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी शरणी पाइए दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाइए हर रस पीवहो पाई नाम जपहो नामो आराधहो गुरपुरे की शरनाई रहा तिसहि प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई नानक की बेनंती प्रभ जी